देव हमारा नमस्कारत सही को हमारी सगल प्रजाजन आप सवारी सेवकन को सेवगन सुख दियो सत्रण को बल मो बद कियो घट घट गे अंतर की जानत पले बुरे की पीर पशानत चीटी ते कुंचरे अस्तुला सपर कृपा दुष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पशन्न कट कट के पट पट की जान जब

कोई, दुष्ट छा शबाए सके न कोई। एक बार जंत में संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन्नर नाम त्योहारों कहा, दार्द दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दलिहु उबारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता। केलविक सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को शय करता। श्री अस्तु जप हे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तकला।

सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी संत साजन भए।

अंतर गुरु आराधना जिहवा जब गुरु नाओ नेत्री सतगुरु पेखना सरवणी सुरना गुरु नाओ सतगुरु सेती रत्या दरगाह पाई ठाओ कहो नानक कृपा करे।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर।

0: जे बहर न करना सो पद रवो जे बहर न रवना सो ध्यान तरहो जे बहर न तरना ऐसे मरहो जे बहर न मरना। पहला मरण कबूल जीवन की छड आस हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। कबीर मरता मरता जग मुआ मर पी न जान्या कोए ऐसी मरनी जो मरे
1: पावर न मरना होए।
0: महान शहीदां दी याद विच समूह संगत बड़ी श्रद्धा ते भावना दे नाल जुड़ बैठे जे। धन गुरु अर्जन साहब महाराज दी लसानी कुरबानी और जून 84 दे समूह शहीद सिंघां दी याद नूं महान गुरमत समागम इत्थों दे प्रबंधक जना संगतां ने रखिया है। साढ़े तो पहलों गुरु प्यारे आप जी दे नाल जो अज महान दिहाड़ा उस भाई महंगा सिंह बब्बर दा है जिन्हें अज दे दिन शहादत पाई उन्हां दी मैं कविता कहण दा जिक्र करूँगा। आओ सारी संगत एक बार सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी नूं अदवे सी चुकाओ ते गज के आखो जी
1: वाहिगुरु
0: जी का खालसा
1: खालसा
0: वाहिगुरु जी की फतेह। शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी नूं एक बार सिखा ने पूछया महाराज जी इस दुनिया दे अंदर सब तो उच्चा ते सुच्चा सिरे दा काम केड़ा। ते गुरु अर्जन साहब महाराज दे वचन हन हर कीर्त साध संगत है सिर करमन के करमा कहो नानक तिस भयो प्राप्त
1: जिस
0: पुरब लिखे का लहना। सिखो दुनिया विच सब तो उच्चा ते सुच्चा जेड़ा सिरे दा काम है ना ओ है सत संगत कर लेनी। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया
1: सो तरिया
0: भागे भागा वाले जे जिन्हां नूं सुभाग घड़ियां दा समा प्राप्त होया। धन गुरु अर्जन साहब महाराज जिन्हां दे प्रथाए भट्टां दे बड़े सुंदर बचन हन सिमरन सोई पुरख अचल अबनासी जिस सिमरत दुरमत मन रासी सतगुर चरण कमल धारन गुर अर्जन गुण सहज विचारन गुर रामदास कर कियो परगासा सकल मनोरथ पूरी आसा तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सो जस वखाण्यो भगत जोग को जैतवार हर जन को पायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो गुरु नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो
1: गुर
0: अर्जन
1: घर
0: गुर रामदास भगत उतर आयो। ऐसे दीन दयाल सतगुरु दा आपा शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं। चंदू दीवान जो जहांगीर बादशाह दा दीवान सी ओदी लड़की जवान होई जदों लड़कियां जवान हुण फिर मापे उन्हां दे साक बारे उन्हां दे व्याह बारे विचार करदे आ। चंदू दीवान ने अपने लागी नाई ते पांदे नूं क्योंकि पहला जेड़े रिश्ते वेंदे हुंदे सी ना वह नाई ते पांदा ही तय करदे करिया करदे सी। हुण ते उस तो बाद फिर रिश्तेदारी विचोले आ गए फिर मां प्यो ते भैण जांदी वेखण हुण ते गुरु कृपा करे ना ही खुलासा कराओ पहलो नाई ते पांदा रिश्ता वेखण जाया करदे सी। आओ चंदू दीवान ने आख्या मेरी लड़की जवान हुई आ कोई चंगा तलीम दार लड़का जेड़ा पढ़िया लिखिया होवे उच्चा जवान होवे सोहना होवे ओ लड़का पसंद करके ओ घर भी चंगा होवे ते वर भी चंगा होवे। जिस तरह चंदू दीवान अपने लागियां नूं एक पक्की करदा है ओना लैणा नूं तुहाडे सामने कोरड़े छंद वे जोड़ी इंज बयान कर रही है।

मेरे मन में फिर की शंका रावण दी जापे लंका पर उस विच बरक बेअंत है जी एते

सहस तव नैन नन नैन हह तोहे कौ सहस मूरत नना एक तोहे सहस पद बिमल नान एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोहि सब मह जोत जोत है सोए तिसदा चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो

नमः अष्टपदि सिमरौ सिमर सिमर सुख पाव काल क्लेश तन माह मिटाव सिमरौ जास विषम पर एक नाम जपते अगंत अनेक

है संग देह मार के गण जहन को सहर का नाम हा संग तो संग देह पैंड है महान गुब्बारा हर का नाम संग उजियार जहां पंथ तेरा को ना संजानु हर का नाम तह नाल पछानु जह महापयान तप्त भव काम तह हर के नाम की तुम ऊपर श्याम जहां त्रिखा मन तुझे अकारिख है तह नानक हरे हरे अमृत बरख है भगतना की बर तन नाम समझना कह मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर अखद साध कुमात

आप प्रभ दीना हर हर जन कह उठस्तानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर सराते सुन समाध नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जपे हर का भगत प्रगट नहीं छपे हर की

दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुरत सब नसै संत का संग भागी पाई संत की

सगल कटा के अंतर जामी अपनी गात मित जान न हो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्त तुम ते होए नान कबर न जान कोय सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह ऊतम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम मह उद्यम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जास सुन रसन बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जेहे।

आवत नेरा। उपाव से अणु सकल तेरा तो सब कह जाने आत्म की रहत जिस भाव है तिस लय लड़ लाए थान सरंत्र रह समाज सो सेव जिस कृपा करी निमुख निमुख जप नान करी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिरस जाय हमेव नान प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदि जेह प्रसाद शक्ति अमृत खाए तस ठाकुर कौरा खमण माओ जेह प्रसाद सुगंधन तन लावे तस कव सिमृत परम गत पावे जेह प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याए सदा मणि अंदर जेह प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमर हो तिस रसना जेह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जेह प्रसाद पाड़ पटंबर हंडावे तिसे त्याग कत अवर लुभावे जेह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जास गावी जय जेह प्रसाद सब कौ माने मुख ताको जास रसन बखाने जेह प्रसाद रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ दी जब तर गए मान पावे नानक पासे ती कर जावे जेह प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लाभ हो तिस राम सनेही जेह प्रसाद रहुला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जेह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाकै मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताकै जेह प्रसाद त्रिको न प्रभु चै मन साहस साह सिमरो प्रभु चे जेह प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भक्त करे जेह प्रसाद भूखण पहरी जय मान तेह सिमरत कं आलस की जय जेह प्रसाद असव ते सुवारी मान तेह प्रभ को कब हूं ना बिसारी जेह प्रसाद बाग मिलिख तना राख प्रोय प्रभ अपने मन जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सल तिसेह त्याई तिसेह त्याय जो एक अलख है ईहां ऊहां नानक तेरी रखै जेह प्रसाद करे पुन बोदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जेह प्रसाद तू विचार व्यवहारी तिस प्रभ को साह साह चितारी जेह प्रसाद रस सुंदर रूप सो प्रभ सिमर हो सदा अनूप जेह प्रसाद तेरी निकी दाद सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जेह प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे जेह प्रसाद सुनहे करनाद जेह प्रसाद पेखे बिस्माद जेह प्रसाद बोलहे अमृत रसना जेह प्रसाद सुख सहजे बसना जेह प्रसाद हत कर चल है जेह प्रसाद संपूर्ण फल है जेह प्रसाद प्रेम गत पावे जेह प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लंग गुर प्रसाद नानक मन जागो जेह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूला मनो बिसार जेह प्रसाद तेरा प्रताप रे मर मूर तू ताको जा जेह प्रसाद रे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जेह प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता स्यों राज जेह प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिंगास प्रभ

की शोभा प्रभु महंस मानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा पर फुले साध के संग आभ बस पंचा साध संग मृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रैन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कतहू तावे साध संग अस्तित मान पावे साध के संग माया ते पिहन साध संग नान प्रभु सो प्रसन्न साध

साध पेटे संयोग साध की महिमा वेद न जाने जेता सुन हिते तब ख्याने साध की उपमा दे गुण ते दूर साध की उपमा रही पर पूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उचते उची साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई सरोक मन साचा मुख साचा सोय अवर न पेखे स्पिन कोय नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेव जैसे जल में कमले अलेव ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व का सुख ब्रह्म

चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी कह गुनाहु नानक ज्यों पाव का सही सुभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल तेह निर्मला जैसे मैल न लागे जलन। ब्रह्म ज्ञानी कह मन होय प्रगाह जैसे तारु पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समान। ब्रह्म ज्ञानी कह नाही महान। ब्रह्म

सदाकार ब्रह्म ज्ञानी सदा सर्व जागत ब्रह्म ज्ञानी अभ्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता ब्रह्म ज्ञानी कै हो चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जैस करे प्रभ्याम ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी का बाल बाल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आम परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए दाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंतर पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार ब्रह्म ज्ञानी आवरिंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नान ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनि श्लोक

जीवन मुक्त सौ कहावे तैसा हरख तैसा उह सोग सदानंद तह नहीं ब्योग तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बेखाटी तैसा मान तैसा महान तैसा रंग तैसा राजान जो वृता साई जुगत नानक पुरख कही जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाव जिद जिद घर कह तैसा दिन नाव आपे करण करावन जोग प्रभ भाव सोई फन होग पसरियो आप

अग्नि। कई कोट प्रभु को खोजनते आत्म है पार ब्रह्म रहन्ते। कई कोट दर्शन प्रभु प्याह तन को मिले प्रभु अविनाश। कई कोट मांग सत संग पार ब्रह्म तन लांगा रंग जन कहो आप सो प्रसाद।

जगदीश जियो पिंड सब तिस की रास कर कर पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बलते आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बाल नाई इस हाथ करन करामन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भावे सोई फुन थियो कभू जनीज में बसे कभू सो गर्ख रंग।

क्रोध विकराल, कब हूँ सर्व की उतरवाल, कब हो बह बड़ राजा, कब हो पे खारी नीच का साजा, कब हो अब की रित मह आवे, कब हो पला पला कहावे, ज्यो प्रभ राखे तब ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कबू होए पंडित करे भख्यान, कबू मोन धारी लावे ध्यान, कबू तर तीर्थ स्नान, कबू सिद्ध साध कबह ज्ञान, कबू कीट हस्तंग हो दिया, अनक जोन भरमे भरमिया, नाना रूप ज्यो सुहा।

अंतर हुए ज्ञान प्रगास हो से स्थान का नहीं विनाश मान तन नाम रते करंग सदा बस सह पार ब्रह्म के संग ज्यों जल में जल आय कटाना त्यों ज्योति संग ज्यों समाना मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सद कुर्बान श्लोक सुखी बसे मस्कीनी आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नान गर्भ गले अष्टपति जिसके अंतरराज महान सो नरक पाती होवत सुवान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत

कहो शिवटे सास खटे लाख का उठता आवे त्रिपत नावे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नह त्रिपत आवे खाप खाप मरे बिना संतोख नहीं को राजे स्वप्न मनोवर्थ भी थे सब काजे नाम रंग सर्व सुख हो बड़ भागी किसे प्राप्त हो कर्ण करावने आपे आम सदा सदा नान कर जावे।

का हुक्म बूझ सुख होय तिसका नाम राख कंठ परोय सिमर सिमर सिमर प्रभ सोय नानक बिघन न लागे कोय उस तद मन में करने कार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लेह जियो।

परे प्रेम रस रंग उपजय चाओ साध के संग परे सरनान सब त्याग अंतर प्रगा संदन लेवलाग उठभागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मन सब पूरी पही सदगुर ते निर्मल मत लई।

तनयंत्र ही स्वाह नेत्रोपेख दर्श सुख वय मन बिगसे साध चरण तोहे भगत जना कह मन तरंग बिरला को पावे संग एक बस दी जय कर मैं गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि कहीं न जाय नानक रह सर्व समाज।

अनुगुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नान प्रगास रोग सरगुण निर्गुण निंकार सुन समाधि आवापन किया नानक आपे ही प्रजावस्तपदी जब कार्य कह न दृष्टे ता पाप पुन तब कहते हो तब जब तारी अपन सुन समाध दब बैर विरोध के संकमात जब कबर चेह न जापत तब रख सो कहो किसे व्याप्त

सुनदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ आठ पहर पापे खुनेरा मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा सुन उपदेश हृदय सावो मन छे नानक फल पावो हालत पलत दोए लेहो सवार राम नाम अंतर उतार

समझना का पेखन सांभ्रम समझना के हृदय सब धर्म संत जना सुन है शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिस की यह रहत सत बन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख मान है करण क्रामन हार प्रभ जाने अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप साध किया सब

राम सुखमनी सबते ऊच ताकी सोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताव असंग ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे हैं उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख

असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख अलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करहे पार, नानक नीच कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद पावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाम असंख थाम, अगम अगम असंख लो, असंख है सिर पार हुए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुन गाह, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग।

अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारन घटघट बाजे नाद आप नाथ नाती सब जाकी।

चकर जन मरण बिहीन चकर बकर फिरे चतर चकमानी प्रतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जह जाप आदि विनाद मूर्था प्यो सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सब रचियो स्वयं भव गण पंजनहार कालहीन कला संयुक्त काल पुरखा देश धर्म धाम सु परम रायता भूत लख भेस अंगरांगना रंग जाके जात पात नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदाय काम आप रूप अमीक अनु औसत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्वंजन आदरूप सूत अंगहीन भंगनात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व गायक सर्व गोप्रत पार सर्वगंता सर्वंता सर्वतेन भे सर्व शास्त्र न जाने जय रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जाके नेत भाक्त नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे वह चित मद बहार छंद प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन भंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्तन आनास आजान बाहु शाहान शाह राजान राजन पान आन पान देवान देव महान इंद्रान इंद्र बालान बारंकारंकारान काल अनभुदंग अब अभंग गतमित अपार गुणगन उदार मनगन प्रणाम निर्भय काम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड आलस्य कर्मादस्य पर धर्म आलस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा पर नाढ़े अंडन बाढ़ चाचरी छंद त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरे नरनामे अकामे भुजंग प्रयाद छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्या चतर चक्र दान्य चाचरी छंद न सतरे न मित्रे न परमंग न पितरे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य अकृश भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के आ छिज देशा के आ पिज बेसा के आ गंज कर्म के आ पंज भरम के आ पिज लोके के आ दित सुख के अवधूत भरने के विभूत करने के राजंग प्रवाह है के धर्मंग तू जा है के आशोक भरने के सर्वा अपर्ण है के जगत करती है के शतरंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुभव अनुप के आद आदेव है के आप अभेव है के चतरंग भी न के एक अधिन के रुचि रजा के रहीमे रेहा के पाग बेआब के गैबल गैब है के अफुल गुनाह के शाहान शाह के कारण करिंद के रोजी दहंद है के राजक रहीम के गर्भंग करीम के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वतर मान है के सर्वतर दान है के सर्वतर गौण है के सर्वतर पावण है के सर्वतर देशा है के सर्वतर पेशा है के सर्वतर राजा है के सर्वतर साजा है के सर्वतर दीना है के सर्वतर लीना है के सर्वतर के सर्वतर जा हो के सर्वतर पा हो के सर्वतर देशा है के सर्वतर पेशा है के सर्वतर काल है के सर्वतर पल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य के सर्वत्र थाप्य के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र इंद्राय के सर्वत्र चंद्राय के सर्वंकली में के परमी में के आकल अल्लाह में के साहिब कलाम के सुन मजू है तमाम रजू है हमेशल सलाम है सलीकुद मुनाम है गनीबल शिकस्त है गरीबल परस्त है बिलदल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रिजवल निदान है हरीफुल अजीम है रिजाय की यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीमल खराज है नरुक स्वरूप है त्रिमुक्त विभुक्त है प्रभुक्त प्रवाह है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनुभ है समस्तो बराज है सदा सर्व साज है समस्तुल सलाम है सदैव अकाम है निर्भा स्वरूप अगाध है अगाध है अनूप है उवंगाध रूपे ना स्वरूप अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गम त्रिभादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वाग्य सुसर्वा अनुरागे त्रिभुग स्वरूप है अशिज है श्रुत के नरकंग प्रनाश है परतुल प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुग स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अलेख है अपेख है परम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबद्ध है अभक्त है विरक्त है नास है प्रकाश है नचिंत है सुनिंत है अलिख है अधिख है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनत है सुनित है अजात है अजाद है चरपट शंत व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता

पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैन दशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसी को हमारा।

जी की फतेह। गुरु प्यारी साहब संगत जी साहबां दी रहमत होई है। आप संगतां ने श्री आसा जी दीवार दे कीर्तन गुरद्वारा साहिब फ्री माउंट तों श्रवण कीते हन। आप संगतां दी सेवा विच सत्कारयोग रागी भाई जगजीत सिंह जी लुधियाणे वाले आप संगतां नूं कीर्तन श्रवण करवा रहे सन। समूह जथे दा बहुत बहुत धन्नवाद। आओ हुण सतगुरु साहिब जी वालों बख्शिश मुख वाग दी कथा आप संगतां नूं श्रवण करवा रहे हन। सत्कारयोग ज्ञानी कुलदीप सिंह जी दमदमी टकसाल वाले उन्हां पासों बड़े प्यार नाल श्रवण करिए जी। सो नाल ही आप संगतां नूं बेनती है, जिस तरह जो ये पूरा हफ्ता ही समागम चल रहे हैं, घल्लूघारा दिवस मनाउंदिआं होइआं जून 1984 दे समूह शहीदां नूं याद करदिआं होइआं, नाल नाल पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज नाल शहीदी पुरब आ रहे हैं। इस संबंध विच ही जो हर साल की तरह समूह पंथक जथेबंदियां वालों प्रबंधक कमेटियां वालों जो संगतां दे सहयोग नाल सैन फ्रांसिस्को विखे जो नगर कीर्तन हुंदे हन, आउण वाले शनिवार 6 जून नूं जो हो रहे हन, आप संगतां नूं हथ जोड़ के बेनती है आप जीआं ने उत्थे वध तों वध शहीदां दी याद विच हाजरी भरनी जी। शामां दे दीवानां विच जो विशेष तौर ते शामी 5 बजे तों लैके रात 9:30-10 बजे तक ये पूरा हफ्ता ही दीवान सजा करने हन, जिस विच भाई रागी भाई जगजीत सिंह जी, रागी भाई गुरप्रीत सिंह जी अते ज्ञानी कुलदीप सिंह दमदमी टकसाल वाले अते कुईश्वर भाई महल सिंह जी चंडीगढ़ वाले अते भाई सरबजीत सिंह लाडी हाजरी भरिया करनगे। सो आप संगतां नूं बेनती है आप जी ने समय सिर पहुंच करके लाह लिया करना जी। सो आओ कथा नाल जुड़िए। वाहिगुरु जी का खालसा जी, वाहिगुरु जी की फतेह।

ज्ञानी जीव सदा सदा सुरती ही पत हुई। सर्प सर्प सदा सदा एव गई विहाई। नान किसनो आखिया बिन पुछया ही लै जाई। दोस न देहो राय नो मत चले जा बुढ़ा होवै। गल्ला करे कनेरियां ता अन्ने पवना खाती टोवै। पूरे का किया सब किछ पूरा घट वध किछ नाही। नानक गुरमुख ऐसा।

ठाकर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालो हम बारिक तुमरे तारे। सजन सच्चा पातशाह सिरसा दे साहू जिस पास बैठिया सोही है